कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है कट कट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते

कहूं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेती उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

0: और परवीन बट थैंक यू सो मच इंडीड. प्यार अली भाटिया कहते हैं कि यू विल ऑलवेज सी व्हाट्स रॉन्ग व्हेन यू आर राइट बट यू विल नेवर सी व्हाट्स राइट व्हेन यू आर हैप्पी डूइंग रॉन्ग. अच्छा बहुत खूब सना काना थैंक यू. और सलमा
1: कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन सुनिए. वक्त का पाहिया एक दिन जरूर घूम जाएगा. आज दिल उदास है कल खुशियों में झूम जाएगा. मेहनत की राह चलते रहना एक दिन जमाना तेरे कदम चूम जाएगा. शुक्रिया सुबह का प्यार सलाम सलमा आमद किसुमु.
0: ये कैसे लोग होते हैं जिनके कदम चूमता है जमाना. वो बिलियन में से एक होता होगा. आम लोगों को तो ये नहीं एक्सपीरियंस. हैप्पी ट्यूसडे कहा है रूपल ने. वन लाइन जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और सच क्या. ओके रूपल जिंदगी ख्वाब ये जरूर कोशिश करते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो जाए. और यहाँ पर एक नेमलेस हैं जिन्होंने गुड मॉर्निंग आप सबको कहा है. अमीर अली राना आपने भी और कहते द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड वॉज टू कीप क्वाइट. आई हैव नथिंग टू प्रूव. I'm not convincing anyone that I am a great person. I'm not fixing what I don't break. I'm not fighting for anyone to see my worth. Whatever you do is on you. Hope you don't regret it. As for me, I am moving forward, free and at peace. Amir Ali Rana, बहुत अच्छा फैसला किया है आपने. भरत गंगाराम लंदन में है. मंगल की मंगल कामनाएं वंदनीय परवीन जी को. बहुत शुक्रिया आपका. मिस्टर एम एल विश्वकर्मा कहते हैं देखो सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन लव. कैरेक्टर इज ग्रेटर देन ब्यूटी. ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन वेल्थ. बट नथिंग इज ग्रेटर देन कीपिंग रिलेशंस लाइव. अच्छी बात है. मनहर ने भी आप सबको गुड मॉर्निंग कह दिया चाय के साथ. और शमीम क्या कहती हैं उनकी बात झूठ के बाद सुनेंगे.

0: बस मर्द के पास दो धमकियां होती हैं, एक तो तेरी सौतन ले आऊंगा और दूसरे तुझे तलाक दे दूंगा। और बेचारी औरत समझ इन दो धमकियों से सारी उम्र डरती रहती है। यही दो धमकियां देखा जाए तो। अच्छा शमीम क्या कहती है, शमीम से पहले जनाब एमएल विश्वकर्मा आए हैं, उन्होंने कहा है सैया झूठों का बड़ा सरदार निकला, ये दो आंखें बारह हाथ का था, 1957 की फिल्म थी लता, और कहती है एक्ट्रेस संध्या थी एक्टर मनमोहन। एमएल विश्वकर्मा हाउ काइंड ऑफ यू, थैंक यू। जो कहती हैं शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका के द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटल स्पेस होटल, ऑर्बिट समझ ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है, कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है धरती के अराउंड, कोई नहीं लाखों मिलियंस हैं समझ, कुछ तो नाकारा भी चक्कर लगाते जा रहे हैं सैटेलाइट्स धरती के इर्द गिर्द। तो समझ ये पहला होटल ऑर्बिट करने वाला दुनिया का खुल जाएगा 2027 तक। अच्छा विद अ प्राइस, आपने अगर इस होटल में जाना है तो एक बार रहने के लिए $5 million इकट्ठे कर लें, $5 million और वो भी डॉलर्स। तो समझ ये जो होटल होगा ये सैटेलाइट जैसे अराउंड दुनिया के इर्द गिर्द घूमेगा, आप दुनिया अपना प्लेनेट देख सकेंगे ऊंचाई से। कौन देखना चाहता है प्लेनेट को है। रंजन विनोद फ्रॉम लंदन टू ऑल माय फ्रेंड्स कहते हैं गुड मॉर्निंग। और किसी ने कहा है परवीन जी यू स्टार्टेड विद द वर्ड झूठ, मैं कहती हूँ इट केम टू माय माइंड झूठ बोले कौवा काटे, या वो तो हो गया है ठीक है ना। तो अगर वो झूठा था तो यहाँ बात करते हैं सच्चों के साथ।
1: झूठ बोले कौवा काटे, ये गाना फिल्म बॉबी का है, 1973 की मूवी है, जिसको शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको विठल भाई पटेल ने लिखा है और जिसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाए हैं। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: बहुत खूब प्यार अली। अच्छा आगे तो आगे भी झूठ ही है लेकिन थोड़ी सच की भी मिलावट है।

0: ब्यूटीफुल आवाज़ है वाणी जयराम की। और अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर क्या कहती हैं?
1: हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई, हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई। कोई जुस्तजू का सिला मिला ना सफर का ही हक अदा हुआ। मुझे अपने जब्त पे नाज था सरे बजम रात ये क्या हुआ। मुझे अपने जब्त पे नाज था सरे बजम रात ये क्या हुआ। मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। थैंक यू परवीन जी। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
0: आपने सुना वो कहते हैं कि मुझे अपने जब्त पर बड़ा नाज था कि आई कैन टॉलरेट, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आंख छलक गई है, ये बहुत बुरा हुआ। अच्छा, ये तो नेचुरल है, छलकनी चाहिए, अगर ना छलके तो बुरा हो। सलेश और शीला बहुत शुक्रिया। शब्बीर अहमद आपको गाना पसंद आया, अच्छी बात है। लखबीर क्या बात आपने लिखी है, कहते हैं इंसान कितना भी अमीर हो जाए, इंसान कितना भी अमीर हो जाए, तकलीफें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। वाह, वंडरफुल। तकलीफें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: रोज साढ़े नाल जुड़ो गुरबाणी प्रोग्राम अते गुरमुख विचारां वास्ते सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक। Start your day with peace and devotion. The East African Ramgadia Board brings to you religious prayers. Tune in and be a part of this divine journey every morning from 6 a.m. to 7 a.m. on East FM. Brought to you by the East African Ramgadia Board.

समय किसी दिन जो ओरिजिनल है वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊंगी और आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर जो मैसेज आया है, वैसे मैंने आपको लड़ाई के बारे में भी बताना है जो लफ्जी जंग छिड़ गई है, और ये है रेहान खान। क्या बात है रेहान खान, आपने क्या लिखा है? औरत के बस तीन सुख, औरत को बस तीन सुख चाहिए। एक, सुंदर काया, आप जानते हैं ना, शक्ल हो, सूरत सुंदर हो, सुंदर काया, पर्स में माया, और एक आवाज में पति बोले अभी आया। रेहान, क्या बात है रेहान, थैंक यू। रेहान खान थे वो, समिन बहुत यंग हैं लेकिन प्रोग्राम सुनते हैं, और इससे पता चलता है, कई बार मैं डाउट भी करती हूँ, शक भी करती हूँ कि मे बी कभी कभार ऑन करें, लेकिन वो सुनते हैं पूरा प्रोग्राम। ग्रेट रेहान, रसिला, व्हाट अ गुड सॉन्ग अभी अभी जो आपने बजाया है, गुड्डी, फिल्म गुड्डी का। ओके, ठीक है। समय मैं कह रही थी कि अमेरिका और फ्रांस, इनकी लड़ाई शुरू, लड़ाई नहीं शुरू, शुक्र हो है कि अभी नहीं मैदान पर, नहीं तो सोशल मीडिया पे लड़ाई हो रही है अमेरिका और फ्रांस। समय आजकल फ्रांस काफ़ी टूरिस्ट गए हुए हैं, तो अमरीकी टूरिस्ट वहाँ जाकर फ्रांस का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि अब तक आपका एयर कंडीशनिंग का सिस्टम ठीक नहीं है, दुनिया ने इतनी तरक्की करी है, आप देखें एसी नहीं लगा होटलों में, एसी नहीं है आपके फ्रांस में, पब्लिक इमारतों में एसी नहीं है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हुए, और कहते हैं घरों में एसी नहीं है। तो इसका जवाब डेप्यूटी मेयर जो पेरिस की है उन्होंने दिया है, वो कहते हैं देखो अमरीकियों, तुम तो खैर जबान ना खोलो, सारी दुनिया क्लाइमेट चेंज झेल रही है, जो अमरीका ने पैदा किया है क्लाइमेट, मौसम में जो तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज आपकी वजह से हुआ है, द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, वो हमें बताएंगे कि हमारे पास एसी नहीं।

0: ये आवाज थी नाही दख्तर की और ये असल आवाज थी उन्हीं की है, किसी और ने नहीं गाया हुआ। और मंजुला विश्वकर्मा क्या कहती हैं?
1: परवीन जी, सबको मंगलवार की मंगल शुभकामनाएं। शांति चाहिए तो उससे बांधिए जो आपको बांधे नहीं। छोटा सा कोड है लेकिन देखिए, शांति चाहिए तो उससे बांधिए जो आपको बांधे नहीं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे। और आरफा उंगटा रुंगाई, वो कहती है आपकी न्यूज मैंने अच्छी तरह से नहीं सुनी। कौन सी? समय वही अमेरिका और फ्रांस की लड़ाई जो मैं कह रही थी, लफ्जों की लड़ाई है। ये टूरिस्ट आए हुए हैं फ्रांस में अमेरिका से, और हमेशा जहां भी वो जाते हैं उस मुल्क का ज़रूर मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इस दफ़ा फ्रांस को कि आपका एसी सिस्टम है ही नहीं, आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स में नहीं है एसी, घरों में नहीं है, होटलों में नहीं है, क्या है? तो डेप्यूटी मेयर ने कहा है कि अपनी ज़बान बंद रखो, जो आपने किया है ना, क्लाइमेट चेंज करवाया है सारी दुनिया में, वो आप ही की वजह से है, द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, हमें सबक दे रहे हैं। ये लड़ाई हुई है, अच्छी लड़ाई है, डेप्यूटी मेयर ने बहुत अच्छा कहा है। बॉबी उस्मान, गुड मॉर्निंग आपने कहा है। और शबी खूब शहजादी साहिबा नाहिद अख्तर, नाहिद अख्तर का समन, ये एक अनयूजुअल था नगमा जो मैंने आपको सुनाया है। और आगे बोल गोरी बोल, तेरा कौन पिया।

और अभी अभी क्रिश्चियन सर्वे ने कॉल किया और कहा कि फ्रांस ने G7 इदारा छोड़ दिया है. ये गलत खबर है. फ्रांस ने नहीं छोड़ा G7. एक ही मुल्क ने छोड़ा है तारीख में G7 को और वो है रशिया. और फ्रांस इज अ मेंबर ऑफ द G7. कोई नहीं छोड़ा. उसने सिर्फ एजेंडा में कोई तरमीम की थी एक बार जून में.

0: East FM. This is East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel.
1: Kenyans have until midnight today to file the annual income tax returns with KRA to avoid penalties. The authorities urging taxpayers, including those with nil returns, to submit their returns before the deadline, warning that late filing attracts fines and other enforcement measures. The National Transport and Safety Authority, NTSA, has defended the proposed annual inspection of vehicles, describing it as illegal and necessary. Speaking during an NTV morning interview, NTSA Director General Nahashon Kondiwa said the inspections are aimed at enhancing national security and ensuring vehicles comply with road safety standards. He noted that private vehicles account for more road accidents than public service vehicles, making the exercise crucial for improving safety on Kenyan roads.
2: We are using an average of 4 years because we could have used other parameters like mileage, but that is very difficult to track. So we use the 4 years just to see, is this vehicle still in the right condition, even in terms of environmental impact?
1: A senior police officer has died following a head-on collision between Haka and a lorry along the Machakos-Kitui Road in Imwala sub-county. Inspector Felistas Kateve Mbaluka, who headed the Makutana Police Patrol Base, sustained multiple injuries and died while receiving treatment at a hospital in Masii town. The lorry driver survived the Sunday night crash. Police have launched investigations to establish the cause of the accident. A partner who demands constant involvement in every aspect of your life may be displaying sense of childhood neglect or abandonment rather than love. Therapist Susan Kahema says such dependency can be a red flag and may make it difficult for the person to let it go if the relationship ends, urging affected individuals to seek therapy while noting that the decision to leave remains a personal one.
0: East FM News. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
4: और समय लखबीर ने क्या लिखा है, कहती हैं अगर आप मुझे पूछें कि आपके ख्यालों में मैं कितनी बार आया हूं, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई कम टू योर माइंड, कहते हैं कि आई वुड से वंस, जी हाँ, यू केम वंस एंड देन नेवर वेंट बैक, यू स्टेड फॉर एवर. क्या बात है, बहुत अच्छे लखबीर. छिंदर सैमी, आपने सबको ग्रीट किया. यस सर, टुडे इन हिस्ट्री, द आगा खान लॉन्च्ड द मल्टी मिलियन पाउंड टूरिस्ट गेम लॉज एंड होटल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन नैरोबी ऑन June 30th, 1971. दिस मार्क्स द फाउंडेशनल डेवलपमेंट ऑफ सरेना होटल्स. अच्छा, सरेना होटल्स की आज बुनियाद रखी थी हिजाइनस ने. दिस पायनियरिंग प्रोजेक्ट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर ईस्ट अफ्रीकाज पायनियर प्रीमियर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी चेन सरेना, फेमसली डेब्यूइंग द फ्लैगशिप नैरोबी सरेना होटल एज वेल. बहुत अच्छे. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC ऑफिशियली गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम बेल्जियम आज इन 1960. DRC समझ आई, इबोला की वबा फैल रही है, उनको आज़ादी 1960 में मिली थी. पैट्रिस लुमुम्बा वॉज इनॉग्रेटेड एज द नेशंस फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड PM अलॉन्ग साइड प्रेजिडेंट जोसेफ कासा. बहुत अच्छे यासर, दैट वॉज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. समझ के आज तारीख में क्या हुआ था. अमीर अली राना, परवीन जी, अमेरिकन्स कंप्लेनिंग अबाउट एयर कंडीशनिंग इन होटल्स एंड हाउसेज इन फ्रांस. My question is, how uneducated can you be? When you book your vacation, you should clear with the travel agent about your infancy needs. If it's not available, don't go there. Achha, bilkul. Lekin wo mazak bana rahe hain. ML Vishwakarma, aapne kaha Milan ka ek gana. बोले बोल गोरी बोल तेरा, कहते नूतन पर फिल्म आया गया था, लता का गाया, 1967 की फिल्म, 67 की. बहुत खूब ML विश्वकर्म. अब चलते हैं समन, इंडिया में पैदा हुए बलविंदर सिंह, ठीक है, इन्होंने अपना नाम बदल कर जसविंदर सिंह रख कर अमरीकी सिटीजनशिप हासिल की. नाम उनका बलविंदर, जब उन्होंने शहरियत के लिए कागजात पे लिखना था, फॉर्म भरने थे, तो उसमें लिख दिया मैं तो जसविंदर हूँ, मैं बलविंदर नहीं हूँ. सिटीजनशिप की अर्जी कर दी. अब आपके खिलाफ एक मुकदमा शुरू हो गया है. आपकी नेचुरलाइजेशन कैंसल की जाएगी। क्यों? अदालत ने कहा है आपने धोखा दिया है। तो धोखे का भी समीन एक लफ्ज है ना इंग्लिश में, डिसेप्शन। ठीक है, एक और भी चीज उन्होंने एक और नाम साथ दिया है, यू आर एक्यूज्ड ऑफ डिसेप्शन एंड डैश, एक लफ्ज है जो आपने मुझे देना है। एक तो इस आदमी को डिसेप्शन के लिए आरोपी ठहराया जाएगा, और दूसरा क्या है, दूसरे का मतलब है कि किसी चीज को तोड़ मोड़ के बयान करना, किसी चीज को झूठ करके दूसरे को धोखा देना। ये लफ्ज, एक तो डिसेप्शन है, दूसरा क्या है, एम के साथ शुरू होता है, इतना काफी लंबा है, एम के साथ, ढूंढिएगा कि अदालत ने कहा है कि तुम्हारी नेचुरलाइजेशन, ये जो तुम्हारा पासपोर्ट है ना, कैंसिल होगा, आपने हमें, आपने अमेरिका को डिसेप्शन आपने की है अमेरिका के साथ, दूसरा क्या किया है वो भी बता दें। और मुझे लगता है कि ये आसर ने जाके गूगल कर लिया एकदम से, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट कॉलर यासर, समझना, आप भी ढूंढिएगा।

0: हरियाली और रास्ता और किसी ने हरियाली ढूंढ ली है. शनाज बट फ्रॉम तंजानिया करेक्ट आंसर. एक और आंसर जो आया है वो है मनिपुलेशन. कल्पना मनिपुलेशन नहीं है, एम के ही साथ शुरू होता है, लेकिन ये जो है ना इसका मतलब है कि आपने जो सच है उसे सही तरह से बयान नहीं किया, सच को छुपाया है झूठ के खौल में. और यहाँ पर सोनल मोदा आपने कहा है मलेवलेंट, वो मतलब ईवल जालिम. ठीक है, नेचुरलाइजेशन लखबीर नो, पर रितु वंडरफुल करेक्ट आंसर रितु गुप्ता. सना कुड बी नाइविटी नहीं, प्यार अली भाटिया.
1: जी बोल मेरी तकदीर में क्या है, ये गाना फिल्म हरियाली और रास्ता का है, 1966 की मूवी है, जिसको मुकेश लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको शैलेंद्र ने लिखा है और जिसकी धुन शंकर जय किशन ने बनाई है. ये गाना मालाशिया और मनोज कुमार पे फिल्माया गया है. गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया.
0: और मंजुला विश्वकर्मा कहती हैं कि मे बी इट इज मनिपुलेशन. नहीं, मनिपुलेट करने में धोखा नहीं है. ठीक है, अच्छा भरत गंगाराम, माल प्रैक्टिस ये हो सकता है. माल प्रैक्टिस इज एनी टाइप ऑफ गलती, जो गलत काम है कानून के खिलाफ. ओके, और यहाँ आए हैं जुएब, जुएब डुंगरवाला. जुएब डुंगरवाला आपने कहा है मनिपुलेशन, तो मैं यही कह रही थी कि ज़रूरी नहीं कि मनिपुलेशन सच को सच पर पर्दा डाले, ये नहीं. मैंने कहा है कि उस शख्स ने सच को छुपाया है. ठीक है, सोनल मोदा मॉन्स्ट्रस नहीं. अमीर अली राना मिसलीडिंग, सो यू आर एक्यूज्ड ऑफ डिसेप्शन एंड मिसलीडिंग, नहीं ये नहीं हो सकेगा. सो यू हैव टू हैव अ नाउन, बड़ा है ये लफ्स, जैसे डिसेप्शन है, वो भी एन के साथ, लेकिन एम के साथ शुरू होता है, एम फॉर मास्टर. कोशिश करें.

सोनल मोदा ने कहा इट कुड बी मलिशियस. नो, मलिशियस का मतलब होता है ईवल. लेकिन ये सम कानूनी लैंग्वेज है ना, तो उसका लफ्ज अलहदा होगा, एक और तरह का होगा. ये मलिशियस बड़ा कलोक्वियल है, आम भाषा में इस्तेमाल होने वाला, तो वो जज नहीं इस्तेमाल करेगा या अदालत में नहीं होगा. लखबीर आपने कहा है, बिल्कुल करेक्ट लखबीर, करेक्ट है आपका आंसर. और रीटा वो कहती हैं मनिपुलेशन. नो, मनिपुलेशन नहीं है. यहां एक आंसर आया है मिस अप्रोप्रिएशन. जो मिस अप्रोप्रिएशन है ना, शहाब जमान ने भेजा है ये आंसर. शहाब, मिस अप्रोप्रिएशन मतलब आपने फंड आपके हाथ में था, आपने यहां से वहां कर दिया है, आपने अपने अकाउंट में उसको मुंतकिल कर दिया पैसे को, तो मिस अप्रोप्रिएशन उस हालत में होती है. यहां पर एक आंसर आ गया है और वो है कल्पना. आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अब मंजुला विश्वकर्मा, बिल्कुल करेक्ट मंजुला, सिर्फ आपने इसके आगे ION लगाना था. ठीक है, ION. और खदीजा मडलिंग नहीं. दर्शन सिंह लोटे, लवली सॉन्ग्स टुडे. अच्छा, अब नहीं, ये लफ्ज है भी नहीं. मंडेशियस नो. अच्छा, कोशिश करें वरना मैं जवाब दे दूंगी, फिर हमने मुहावरा भी करना है. ईस्ट FM, केन्या's

0: और कह रही हैं आरफा फ्रॉम मंगाटा रुंगाई, जिनकी फरमाइश पर ये गाना सुनाया। समझ कहती है क्या मजा आ गया, आदमी और इंसान फिल्म थी। कहती है हमने सिनेमा स्कोप पे देखी ये फिल्म, फिरोज खान हैं, धर्मेंद्र हैं, मुमताज हैं और सायरा बानो, क्या ब्यूटीफुल कास्ट है। कहते हैं बहुत ही यादगार, आदमी और इंसान। चलिए आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई है, अब देखते हैं कि मनहर पटेल ने क्या कहना है।
1: हेलो, मनहर पटेल किसुमू, एवरीबॉडी गुड डे ईस्ट एफएम लिसनर्स। ओके, हस्बैंड वाइफ दो थे, तो हस्बैंड शाम को घर पे आवे तो पहले बोले उसकी वाइफ को एक अच्छी सी चाय बना। चाय पीने के बाद वो बोले अभी मेरे को थोड़ा सर दर्द दुख रहा है, तो मेरा सर थोड़ा दबा दे। तो वो एक एक घंटा दो दो घंटा उसकी वाइफ को बोलता था कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे को प्रेस कर दे। तो फिर एक बार उसकी वाइफ ने बोला कि तुम मेरे से ये सारा हेड मसाज कराते हो, तो लगन के पहले तुम्हारा सर दर्द का मसाज कौन करता था? तो उसका हस्बैंड बोलता है कि लगन के पहले मेरे को सर दर्द था ही नहीं, ये तो लगन के बाद हुआ, इसलिए अभी तेरे को ये मसाज करना पड़ेगा। थैंक यू, मनहर पटेल किसुमू।
0: ये सर दर्द तो शादी के बाद हुआ है ना, तो तू जिम्मेदार है, तुझे ही करना पड़ेगा।

0: अमीर अली राना, आपने कहा है आजकल तो सारी दुनिया बिक रही है, बिल्कुल सभी बिक चुके हैं। और यासर, आपने डिटेल्स दिए जो गाना मैंने आपकी फरमाइश पर सुनाया, अब चाहे मां रूठे, फिल्म दाग 1973 की फिल्म थी वो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कमाल का संगीत था। मंजुला विश्वकर्मा।
1: परवीन जी, मारा माथा दुखी छे, ये तो मुहावरा नहीं है, ये तो सच में किसी का हेडेक हो रहा होगा, तो हो रहा होगा तो वो यही बोलेगा ना कि मारा माथा दुखी छे। मैं गलत हूँ क्या?
0: नहीं, आप बिल्कुल राइट हैं, ये नहीं है मुहावरा। कई आज एक दो आए हैं, यानी माथा चूमना, वो तो एक्चुअल है टू किस द फॉरहेड, तो वो तो ना हुआ ना, तो मैंने जाने दिया क्योंकि उनके आसपास अच्छे मुहावरे आ गए थे इसलिए।

मगर भंवर में कश्तियां उतारते चले गए, उतारते चले गए जो जिंदगी के रास्ते संवारते चले।

0: और आरफा कहती हैं व्हाट अ सॉन्ग, ये भी फिल्म कहती है बहुत अच्छी थी, और इसमें जॉय मुखर्जी हैं और साधना, कमाल की जोड़ी। कहती है वो ज़माना था, ये वो ज़माना था रुमानी फिल्मों का, जबकि फिल्म मेकर्स में पैशन था टू मेक गुड हाई क्लास मूवीज, और ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हुआ करते थे। सही, अब तो बिल्कुल सब कुछ बदल गया है आरफा, थैंक यू। अब देखते हैं कि किसने क्या कहना है हमें, और पहले देखते हैं अजय।
1: हेलो सलाम परवीन जी। परवीन जी बात माथे की चल रही है तो कुछ याद आ गया माथे पर। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा शायरी को। परवीन जी चलते चलते चलती फिरती शायरी भी याद आ गई है। हर दरगाह पे धागा बांधा था मैंने, हर दरगाह पे धागा बांधा था मैंने, हर मंदिर पे माथा टेका था, मैं ईश्वर अल्लाह सब भूल गया, मैं ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते देखा था। कभी कभी ऐसी शायरी भी सुना देनी चाहिए, क्योंकि और कुछ था नहीं मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी कल, धन्यवाद।
0: नहीं नहीं अजय पाल, दिस वाज ब्रिलियंट। कहां कहां दरगाहों पे धागे बांधे, माथा टेका, कमाल है। और जब तक वो जिंदा थी, घर से बाहर तक मुंह में लुकमा था, मतलब कि तब भी खाना खा रहे थे। जब तक बाहर भी निकलते थे तो मुंह में खाना था, क्योंकि घर में वो फोर्स करती थी कि आप खाओ, पका के रखती थी आपके लिए, जब तक वो जिंदा थी। माँ की बात हो रही है। नीला शेत।
2: हेलो परवीन जी, गुड आफ्टरनून, कैसे है? कब से मैं मत्था मत्था सुन रही हूँ, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। मेरे पास एक है, मेरा बॉस दो मत्थे वाला है, मतलब सर फिरा है, दो मत्थे वाला, नीला शेट, थैंक यू।
0: अच्छा, दो मत्थे वाला, ये तो मैंने, ये पहली बार है। ओके, होगा दो मत्थे वाला।
3: हेलो, ये जॉनी वॉकर का गायन लगाओ, सर मेरा चकराए या दिल रूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे, जॉनी वॉकर, थैंक यू। मनोहर पटेल, किसुमो।
0: हालांकि उसका माथा नहीं, उसका सर था, पर फिर भी मैं सर पर ही लगा देती हूँ वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको ये सुनना होगा।
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

और समीर अपना भविष्य आपने रोशन खुद करना है. अच्छा सा जॉब आपको चाहिए ना, तो समीर आपने ट्यूसडे स्टार जाके खुद ले लेनी है, क्योंकि आज 1,00,000 स्टार्स मुफ्त दी जा रही हैं. तो जाइए, फ़ायदा उठाइए द ट्यूसडे स्टार का. हैरान कुन जॉब्स आपको इसमें मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स. और करियर को आपने तरक्की दिलानी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही. समय टेंडर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने गवर्नमेंट के टेंडर भरने हैं, सरकारी टेंडर्स जो ठेके, तो समय उसकी भी जानकारी ट्यूसडे स्टार में है. जहाँ जाकर किसी इस जगह में जाकर समय, जैसे कि चंदा राना हुआ, नाइवास हुआ, क्विक मार्ट, काकफोर, नैरोबी, जो SGR कम्यूटर स्टेशन हैं, हुडुमा सेंटर्स, ट्राइबर्स, वहाँ जाके कहें मेरी मुफ्त की ट्यूसडे स्टार कहाँ है और ले लें. यहाँ पर आया है मैसेज शब्बीर अहमद का. जो शब्बीर ने आज कहा है ना, वो हम कल आपको बताएंगे कि क्या कहा था. ठीक है, बिंदु, माथा घूमना, मेरा तो माथा घूम रहा है. ओके बिंदु फ्रॉम जयपुर. मनहर कहते हैं, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, सर जो तेरा चकराए. ओके परवीन जी, आई डोंट थिंक मनहर इज इन अ गुड मूड. कंप्लेन्स अबाउट हेडेक्स फ्रॉम मैरिज, नाउ ही वांट्स अ हेड मसाज. कहते हैं मनहर ना आज अच्छे मूड में नहीं है, आप इसको सर की क्या कहते हैं, मालिश चाहिए. कहते हैं पहले वो कहते हैं कि शादी में ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब. मैं प्यार का दीवाना.

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

लौंडा दिल तेरा लिख ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान टच है जितने भी रूमर सुने तुमने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना